वैसे तो कहते हैं कि वादे तोड़ने के लिए किए जाते हैं और कस्में जो है सिर्फ खाने के लिए खाई जाती हैं, कोशिशें कामयाब होती हैं। कोशिश कीजिए, आज एक नया मौका मिला है आपको, एक बार फिर जिंदगी को जी भर के जीने का कोशिश कीजिए कि कल की बातें भूलकर आज आप जी भर कर जिएं।

ये वादा रहा रेडियो प्लस पर आपके लिए ऐसे ही बेहतरीन गाने चलते रहेंगे. दैट वाज फ्रॉम द मूवी ये वादा रहा. अब सनम तेरी कसम का गाना आ रहा है आपकी मॉर्निंग को मैजिकल बनाने के लिए. वेल, किशोरदा की आवाज में साथ में है कोरस. देखता हूँ कोई लड़की हंसी तो क्या होता है, आप भी हमें बताइएगा दिल में क्या होता है. कुछ कुछ होता है. वेल लेट मी नो लो सैंक विद नफकात का तफ नफ नफ.

That was from the movie Dil Aakhir Dil Hai. खूबसूरत आवाज़ें लता मंगेशकर जी, साथ में सुदेश वाडेकर जी. जब से देखा है तुम्हें. Well, कई बार ऐसा होता है कि जब हम किसी को देखते हैं तो बस देखते ही रह जाते हैं. लेकिन ये फॉल्स ब्यूटी होती है, ये बाहरी खूबसूरती होती है. कहते हैं नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर. अंदर के इंसान कैसा है वो पता नहीं होता. हमेशा अंदर के इंसान से, जो जैसा वो इंसान है, उसकी फितरत है, उससे प्यार करें, ना कि बाहरी खूबसूरती से. अभी के लिए हियर वी गो विद द नेक्स्ट ट्रैक. स्टे ट्यून्ड ऑन रेडियो प्लस. We'll be right back.

A very good morning, a very warm welcome. स्वागत है आपका मैजिक मॉर्निंग में. नीलम शर्मा हाजिर है आपकी मॉर्निंग को टकाटक बनाने के लिए. स्टे ट्यून्ड ऑन रेडियो प्लस. आपका हमारा साथ रहेगा टिल 6:30. कीप सेंडिंग योर मैसेजेस लुसैंक विद दफकात कातफ डफ एंड रेवेयू लिल मोहिस. आज है 5 मई 2026 की सुबह. गुड मॉर्निंग. एक प्यार का नगमा है और नगमे प्यारे प्यारे चलते रहेंगे रेडियो प्लस पर आपके लिए. आप जो मैसेजेस भेजते हैं ये हमारे लिए एनर्जी डोज का काम करते हैं. सो कीप सेंडिंग देम लुसैंक विद नफकात कातफ नफ नफ. वेल डियर लिसनर्स, बहुत ही खूबसूरत दिन है आज का. दिन जो है ट्यूसडे का दिन है, 5 मई का दिन है. वेरी हैप्पी बर्थडे टू ऑल दोज हु आर सेलिब्रेटिंग देयर बर्थडे टुडे. हे हैप्पी हैप्पी बर्थडे, हैव अ ब्यूटीफुल डे अहेड.

0: वाकई एक प्यार का नगमा है, दो दिन की जवानी है और ये जो जवानी है खत्म हो जाएगी, इसीलिए जवानी में अपने शरीर का ख्याल रखना बहुत जरूरी है. लेट्स टॉक अबाउट इट.
1: 46 मैजिक मॉर्निंग नीलम शर्मा.
0: डियर कमराज, हम लोग जो हैं जवानी में भागते रहते हैं अपने काम की तरफ, अपनी जिम्मेदारियों के लिए भागते रहते हैं और अपने शरीर का ख्याल नहीं रखते. शरीर एक ऐसी जगह है जहां पर आप पूरी उम्र रहने वाले हैं, इसीलिए अपने शरीर का ध्यान रखें. अपने घर का ध्यान रखने से ज्यादा अपने शरीर का ध्यान रखें. ये नहीं कि आई यो मुंह पे नितवाइए, मुंह पे लावे, मुंह पे फैसा, लुत लुत लुत, आई एम डूइंग क्लीनिंग. नो डियर कमराज, उ बिजय फोंक कोंत उ लिखो. अगर आपका शरीर अच्छा है ना तो दुनिया बहुत खूबसूरत लगेगी. अगर शरीर अच्छा नहीं है, आप कभी देखिए, सिर दर्द हो तो उस दिन सब कुछ बुरा लगता है, दांत में दर्द हो उस दिन सब कुछ बुरा लगता है. इसीलिए अपने शरीर का ध्यान रखना बहुत जरूरी है. मेक श्योर दैट यू डू 20 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज, यू ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर और अच्छा खाना खाओ. कल मैंने बहुत गड़बड़ करी. कल मैंने बिल्कुल अच्छा खाना नहीं खाया क्योंकि पूरा दिन इतने बिजी थे. एंड देन आई रियलाइज, यार हम लोग इतना भाग दौड़ रहे हैं, क्यों कर रहे हैं ये सब, ताकि अच्छा खाना खा सके. और अगर हम वही नहीं कर सकते तो क्या फायदा. तो इसीलिए मेक श्योर दैट यू टेक सम टाइम आउट टू ईट प्रॉपर फूड. अभी के लिए हियर वी गो विद द नेक्स्ट ट्रैक. स्टे ट्यून्ड ऑन रेडियो प्लस.

0: वाकई ही जब आप हमारे साथ हो तो हम मौत को जीने के अंदाज सिखा देंगे. बहुत बहुत शुक्रिया डियर लिसनर्स फॉर लिसनिंग टू रेडियो प्लस, फॉर चूजिंग रेडियो प्लस, फॉर मेकिंग अस द नंबर वन.
1: 46 मैजिक मॉर्निंग,
2: मैजिक मॉर्निंग,
1: नीलम शर्मा.
0: Alright, well, मैंने 4 to 5 के बीच पे ईमानदार फिल्म का गाना चलाया था, और इस दिल में क्या रखा है, तेरा ही नाम छुपा रखा है. वेल, हमें पूजा जी का मैसेज आया, कहते हैं आई लव दिस सॉन्ग, रिमाइंड्स मी ऑफ माई चाइल्ड हुड, आई एम अप सिंस 4 AM, ऑल द सॉन्ग्स आर जस्ट वाओ, कीप गोइंग. दैट इज पूजा फ्रॉम रिविज रोम्पा. बो शुप्रिया, कैसी हो, ठीक ठाक, खैरियत. वेल, ये अगला मैसेज कहते हैं, नीलम, It seems you are on top of the world. I have noticed you are happier than yesterday. According to your voice, it seems you are full of energy. They both energy. What a selection of songs on this Tuesday morning. Well, dil khush ho gaya. That is Shashi sahab. Bahut bahut shukriya Shashi sahab. Aapko gaane pasand aa rahe hain. And waqai it's a beautiful day. Monday thoda sa mushkil hota hai. And uske baad jo ek bar aap raftaar pakadte ho na, phir to aap ekdam tanatan chalte ho. Ye kehte hain agla gaana Bombu se Rakesh aur pyari patni Rekha ke liye, jo ki is waqt hamara saath de rahe hain. Kaulesar family. A very beautiful morning to you. Melo Napaji, good morning. Roshan, a very beautiful morning to you. Chachi Pramila, Chacha Devanand, Sital of Lavanchia, a very beautiful morning to you from Priya of Lavanchia. Here we go with the next track. Stay tuned on Radio Plus. Ili Sankhya, Wendu. Aap ho apni Neelam ke saath, aur aapka humara saath rahega till, batao, kitne baje tak? Yes, till 6:30. I'm going to be here reading your messages, playing some lovely music for you, and आपके लिए आपके मैसेजेस भी पढ़ रही हूँ, इसलिए अपने मैसेजेस मुझ तक पहुंचाते रहे ऑन सैंक विद नफकात का नफ नफ नफ. प्रमिला, प्रियंका, दृष्टि और प्रिंस अवि, आपके लिए है ये अगला गाना फ्रॉम क्रिस्टन सामी ऑफ टायक.

0: Well, that was ek dooje ke liye on Radio Plus. Well, we are made for each other, samjhe. Isiliye to har subah aa jati hai aapki Neelam aapki morning ko taka tak batane ke liye. I hope you are enjoying the songs. And well, dear listeners, apne messages hum tak pahunchate rahiye. The sank with Tufkat, kat naf naf naf.
1: 46. Magic morning.
2: Magic morning.
1: Neelam Sharma.
0: Alright, well, this one says, hi Neelam, hope you're fine. Absolutely fine. Kehte hain, nice thought about age. Can you please play a song, Umar ke sa, Seema se, age is just a number. Yes, I believe in that. Well, kehte hain, please dedicate the song for my love, Priga Sen Munyan. I hope I've said it right. Munyan from Wakwa, where everybody talks about our age, but still love continues more and more. Mama, yes, age is just a number. Yaar, logon ko bolne do. Logon ka kaam hai bolna, hai na? Well, wo hai na, gana hai na, kuch to log kahenge, logon ka kaam hai kehna. Chhodo bekar ki baaton mein, kyun apna, you know, time barbaad karne ka. Ay, forget it. Beautiful old songs remind me of old days. Thank you for these lovely songs. That is Ravi. Have a nice day. Ravi sahab, you too have a beautiful day ahead. Then this one says, Namaste Neelam ji, hello ji, kaise ho ji? Movie jab cinema ghar mein chal rahi thi to houseful hua karta tha aur parde ke paas baithne ko mila tha, wo din bhi kya din the. Vijay sahab, kaun si movie chal rahi thi jab? Aapne apni movie ka naam nahi bataya, so let me know. Anju here kehte, cool weather today, lovely songs as usual, wonderful day to the whole team, thank you. Haan yaar, jab आज सुबह जब मैं ड्राइव करते हुए आ रही थी, आई हैड टू लाइक चेक कि कहीं मैंने एसी ऑन तो नहीं किया हुआ है, क्योंकि गाड़ी के अंदर ठंड लग रही थी यार. इट वाज क्वाइट कोल्ड एंड आई एम जस्ट वेयरिंग अ लाइक अ लिटिल स्वेटर एज वेल, बट स्टिल ठंडी लग रही थी. कहते हैं, विशिंग यू अ ब्लेस्ड ट्यूजडे. वेल यस नीलम, जब तुम साथ हो अपने तो हमारा दिन तो अच्छे से गुजरता है. गॉड ब्लेस यू एंड ऑलवेज स्टे हैप्पी. बहुत बहुत शुक्रिया आपके आशीर्वाद के लिए अमृता जी. मेर्सी कमाद. हियर वी गो विद द नेक्स्ट ट्रैक. एंजॉय द नेक्स्ट ट्रैक. स्टे ट्यून्ड ऑन रेडियो प्लस. From the movie Hero. अच्छा देखिए, ये गाना आ रहा है. I know किचन में ऐसे बैठे रहो, बैठे मतलब काम करते रहो तो कुछ फटाफट समय निकल जाता है, बट एंड चिकित बुझे यू कैन डू राइट, है ना? थोड़ा सा हिलो डुलो और जस्ट हैव टू से डिंग डोंग ओ बेबी सिंग अ सॉन्ग. सो माय डियर लिसनर्स, कम ऑन सिंग अ नाइस सॉन्ग. ओके, वेल सिंग अ बिट, मूव अ बिट, और देखिए आपकी जो आलसपन है, आपके जो आंखों में अभी भी नींद है, वो कैसे गायब होती है. ओके, एंजॉय द ट्रैक. स्टे ट्यून्ड ऑन रेडियो प्लस.

0: वेल डियर लिसनर्स, कहते हैं कि वक्त से पहले और नसीब से ज्यादा नहीं मिलता, इसीलिए इंतजार करो, सही वक्त आने पर जो चीज आपकी है वो आपकी जरूर होगी। अगर आज कुछ ऐसा हो रहा है आपकी लाइफ में कि जैसा चाहते हैं वैसा नहीं चल रहा है, थिंग्स आर नॉट गोइंग द वे यू वांट देम टू बी, कोई बात नहीं, चिंता ना करें, नया दिन होगा और जो आपके नसीब में होगा वो आपका होगा।
1: 46 मैजिक मॉर्निंग, नीलम शर्मा।
0: बोलो नीलम बाबा की जय। चलिए जानते हैं कि आज नसीब आपके लिए क्या लेकर आया है। एरीज, टुडे इज अ गुड डे इन टर्म्स ऑफ गेन। यू मे अचीव रिजल्ट्स विद लेस एफर्ट्स। योर लॉसेस मे टर्न इनटू प्रॉफिट विद हेल्प ऑफ योर विजडम। आज आपकी सूझबूझ के कारण आप बहुत आगे निकलेंगे। वेल, ऑल द बेस्ट। टॉरस, टुडे यू विल फील अ बिट डल। आज आपकी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज जो है वो रीअपेयर करेंगे। कोई क्रॉनिक डिजीज जो आपको लगी हुई थी वो फिर से सरफेस करेगी। यू नीड टू अवॉइड रैश ड्राइविंग एंड अननेसेसरी हैसल्स। अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट्स विद योर बिजनेस पार्टनर्स। लड़ाई झगड़े से बचना है और कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन आज ना ले आपके लिए बेहतर होगा। जेमिनाइंस, वेल जेमिनाइंस, यू आर ब्लेस्ड बाय डेस्टिनी। यू जो भी आपके पोस्टपोन हुए थे प्रोजेक्ट्स, दिस विल रीस्टार्ट नाउ। अगर आप किसी मेसी सिचुएशन में थे तो वो अब कंट्रोल में आ जाएगी। कैंसेरियंस, वेल कैंसेरियंस, टुडे यू विल फील एंथुसियास्टिक। इट्स गोना बी अ सुपर नाइस डे फॉर यू। योर फोकस विल बी स्ट्रांग एंड यू विल परफॉर्म रियली वेल एट वर्क एंड बिजनेस। लियोज, यू आर ब्लेस्ड बाय द मून। आज आपकी डेस्टिनी आपको सपोर्ट करेगी, आपकी किस्मत आपका साथ देगी। जो भी काम आपके रुके हुए थे अब वो धीरे धीरे चलने लगेंगे और अगर आप किसी चीज से परेशान थे अब वो परेशानी दूर होगी। इट्स गोना बी अ सुपर डुपर नाइस डे फॉर यू। वर्गोज, यू विल फील अ बिट डल। आप बहुत ज्यादा काम करने के कारण यू विल फील मेंटली टायर्ड। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को इग्नोर करेंगे। आपका एरोगेंस जो है वो आपको आपका सबसे बड़ा दुश्मन हो सकता है। बी लिटिल केयरफुल, आर्ग्यूमेंट से बचना। लिब्रेंस, आज का दिन फेवरेबल है आपके लिए। बहुत अच्छे दिन की शुरुआत हो रही है आपके लिए। अपॉर्चुनिटीज आर वेटिंग फॉर यू एंड यू विल क्रिएट न्यू कॉन्टैक्ट्स। इट्स गोना बी अ सुपर नाइस डे। स्कॉर्पियंस, आप काफी सारा समय जो है वो क्रिएटिविटी में जो है डालने वाले हैं। आज आपके अंदर क्रिएटिविटी जागेगी। आप अपने घर में चेंजेस लाना चाहेंगे और इन चेंजेस की वजह से काफी सारा खर्चा होने वाला है। सैजिटेरियंस, यू विल फील डल टूडे। आज आपके अंदर एक नेगेटिविटी भरी रहेगी। नेगेटिव वाइब्रेशन आर अराउंड यू। योर फोकस मे नॉट बी शार्प एंड यू वॉन्ट बी एबल टू परफॉर्म बेस्ट एट योर वर्क। Sometimes it happens with all of us. Yeah, don't worry. Capricorns, you are advised to avoid hasty decisions and also drive carefully, okay? आज आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती रहेंगी। So you have to be little careful. Aquarians, well, your energy is going to be contagious. जितने भी लोग आपके आसपास रहेंगे वो भी बड़े energetic feel करेंगे आपकी energy को देखकर। Your focus will be strong and it's going to be a super nice day. Pisces, well Pisces, you're going to spend money on your family and this could affect your financial health. You are advised not to spend on worthless items, worthless things. Read documents before signing. ये नहीं कि जो भी कुछ खरीद रहे हैं उसके documents फटाफट sign कर दिए। Conditions applied को जरा ध्यान से पढ़िएगा, कुछ गड़बड़ हो सकती है। अभी के लिए here we go with a romantic song from the movie Tiger Zinda Hai. After a very long time I'm playing this song. Dil Diyan Gallan, भाई आपके दिल में क्या बात है बताइएगा मुझे भी। स्टे ट्यून्ड ऑन रेडियो प्लस।

रात की तन्हाई का आलम होता है और ये 4 आवर्स का सफर बहुत खूबसूरत गुजर ही जाता है। कुछ ऐसे घड़ियों को भी महसूस किया जाता है कि कुछ ट्रैक्स हमने बहुत जमाने से नहीं सुने होते, स्पेशली आपकी डेडिकेशंस के साथ सुन लेते तो ऐसे हमारे सिलेक्शन के साथ भी बहुत जमाने के वो खूबसूरत लम्हों को महसूस करने का एक बहाना बन जाता है। और वो ट्रैक जो आपने नहीं सुने होते वो भी आप सुन लेते हैं। लेकिन चले ये खूबसूरत रात का सफर हमारे साथ ही चल रहा है। अभी के लिए मेरे पास बहुत ही प्यारा ट्रैक है। So let's go enjoy this beautiful song. Churtriya Mare Saath Stay Tuned.

0: Notre priorité. Priorité. Priorité.
1: और इस न्यू आवर के खूबसूरत जर्नी के साथ, इस नए सफर के साथ चले हम हाजिर एक दफा फिर आपके लिए। जुड़ते रहिए हमारे साथ, एंजॉय करते जाइए दिल से, दिल की गहराइयों से लाजवाब नाइट लाइफ का सफर जमाल के साथ। स्टे ट्यून्ड।

वैसे तो बेशुमार डेडिकेशन हमारे पास आते हैं, लेकिन चले फॉर नाउ लेट्स गो फॉर डेडिकेशन. समीर का है आज जन्मदिन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी ब्यूटीफुल हैप्पी बर्थडे टू यू समीर. आपकी जिंदगी का ये खूबसूरत जन्मदिन, ये ब्यूटीफुल बर्थडे आपको मुबारक हो. लेकिन चले इन्होंने हमसे एक ब्यूटीफुल ट्रैक की फरमाइश की है इस खास दिन पर. सो लेट्स गो फॉर दिस ब्यूटीफुल ट्रैक. समीर, दिस सॉन्ग इज फॉर यू.

और इस न्यू आवर के खूबसूरत जर्नी के साथ, इस नए सफर के साथ चले हम हाजिर एक दफा फिर आपके लिए। जुड़ते रहिए हमारे साथ, एंजॉय करते जाइए दिल से, दिल की गहराइयों से लाजवाब नाइट लाइफ का सफर जमाल के साथ।

रात के एक और खूबसूरत मुलाकात एक नए खूबसूरत मिलन के साथ। ब्यूटीफुल ट्रैक्स, हमारी ब्यूटीफुल सिलेक्शन, आपके ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल डेडिकेशंस इस ब्यूटीफुल सीजन के साथ। वो कहते हैं ना, जब भी सीजन बदलता है मौसम का, और तब आपके लिए कुछ ट्रैक्स, कुछ खूबसूरत लोग मेमोरीज की शक्ल में हाजिर हो जाते हैं। सो चलिए अभी के लिए लेट्स गो फॉर दिस ब्यूटीफुल ट्रैक।

0: Akonti Plus, Radio Plus, j'adore.
1: So beautiful songs के साथ, night life की journey के साथ, आपके beautiful dedications के साथ and हमारी beautiful selection के साथ. अभी के लिए for now, it's time to say goodbye. कल मिलेंगे एक नई मुलाकात के साथ. अभी के लिए जमाल को इजाजत दीजिएगा. Once again, thank you so much for your messages, for your dedications, for your phone calls. मैसेज को दिल से आप सभी का शुक्रिया. हमें इजाजत दीजिएगा. Goodbye.